0: लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IIT दिल्ली हरीश साल्वे एंड डायरेक्टर IIT दिल्ली प्रोफेसर रोंगन बैनर्जी वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेरेमनी। ऑन द ओकेजन द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी परम प्रज्ञा एट IIT दिल्ली। Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has stressed the need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Addressing the Sahakar Navkranti program in Mumbai today, Mr. Shah said digital transaction frauds are on the rise and called for stronger forensic support to ensure banking safety. The National Urban Cooperative Finance and Development Corporation, NUCFDC, and the National Forensic Sciences University signed a memorandum of understanding in the presence of Mr. Shah. The Home Minister highlighted the importance of collaboration with the National Forensic Science University in tackling cyber and financial crimes.
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU
3: टुडे एन अग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन आवर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी NFSU। थ्रू दिस अग्रीमेंट द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क टू प्रोवाइड ऑल दिस फैसिलिटीज एट अ वेरी लो कॉस्ट इवन टू द स्मॉलेस्ट बैंक ब्रांचेस। This will cover cyber security, digital forensics, employee training and research. All these facilities will be made available.

0: நீலா. இந்த அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு தொழில்நுட்பம் யூசுப் தெரூர், ஜெயக்குமார். எண்ணத்தில் உண்மையும் தெளிவும் இருந்தால் எண்ணியதெல்லாம் நிறைவேறும் ஒரு நாள். நாளைய விடியல் நலமாய் அமைய வாழ்த்துக்களுடன் விடைபெறுகிறேன். ஒய் பொன்மலர் பாலன். இனி தொடர்வது அகில பாரதேசி நிகழ்ச்சியில் கிரி மல்லப்பா பஜேந்திரி அவர்களின் செனா இசை கேட்கலாம். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல்.
1: ये आकाशवाणी है, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडिकी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चन्वीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्वीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
2: This is Akashwani. In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandiki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channaveera Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
1: Shri Girimallappa Bhajantri apne karyakram ka prarambh rag Rageshri se kar rahe hain. Isme do bandishe जपताल और द्रुत तिंताल में निबद्ध है। सुनिए राग रागेश्वरी।
2: श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री बिगिन्स हिज शहनाई रिसाइटल विद राग रागेश्वरी इन विच ही इज प्रेजेंटिंग टू कंपोजिशंस सेट टू जपताल एंड द्रुत तिंताल।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Jog. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद आप ठीक 11 बजे सुनेंगे हिंदी में, 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।